0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, rollatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: What are you doing? Come on, man. Oh, are you serious? Come here.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Bazaar 97.1 FM.
3: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
4: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets rollatonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Get ready to move.
8: It's all about the beat.
9: Wow FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are listening. Hey. We are... Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईट इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
5: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
5: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
5: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: Oldies Goldies.
1: You are listening 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Plaza 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजा 97.1।
7: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
8: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर।
9: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट वॉलिटन।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rulleton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wallitonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
10: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंगम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: चंगा लग गया करो।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
11: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
11: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
10: टेस्ट भी वाइब भी।
12: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets rollatonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/Eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rulleton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wallitonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid want to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Get ready to move.
8: It's all about the beat.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wallitonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Espeshul Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are listening. Hey. Yeah. Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rullaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets rullatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828 139 630 or 0777 970 5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.
1: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
2: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
3: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है चेहरों पे मुस्कुराहट दिलों में खुशी के रंग ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है
4: ईद की खुशियां हो खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो पाकिस्तान फॉरम नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026 जहां होगा मजेदार खानों का जायका रंगारंग स्टॉल्स खूबसूरत मेहंदी बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस फन डे फॉर ऑल द फैमिली प्लीज कांटेक्ट 07828139630 और 0777970585 Rullaton Park, Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE.
5: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला. Book your tickets. Please visit rullatonhall.org.uk/Eid.
6: Media Partner, Radio Faza.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Fuzan 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाहिया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/Eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा माहरीन दी मदद ली सी जी।
5: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
5: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
5: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: Oldies Goldies.
1: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, rollatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats. Wow,
8: FM. Only Tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क।

0: D26 जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8-2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/Eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
1: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
2: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 Alfred Denton Road, Nottingham, या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE.
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wollertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets, rollatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.
7: Mangala jo bhi mangna, mil juga.
8: Jo mangna si, wo to mil gaya.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम।
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
11: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
1: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
11: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
11: delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas aur fresh drinks. Sab kuch ek hi jagah.
1: Kyunki jab khana ho zabardast to mood khud hi ban jata hai.
11: So, aaj hi visit karein Mood Restaurant, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
1: Har din ko banaye special Mood Restaurant.
11: Taste bhi, vibe bhi.

तो लेकिन अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कुछ आपके लिए शुभकामनाएं और कुछ आपके लिए अच्छे से वर्ड भी मैंने छोड़े, और इसके साथ साथ आपको बताते लेना फीफा और वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है, हर जगह पे जनाब भरपूर है, शोर है, हल्ला गुल्ला है और टीमें आपस में जनाब वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हो चुकी हैं और हमारी जो वर्ल्ड कप की एक रूटीन है वो चल पड़ी है। डेफिनेटली हर जगह पे यही चीज़ है, आपको बताते चलें कि 48 टीम्स टोटल जनाब पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, और जिनको स्प्लिट किया गया है 12 ग्रुप्स में, ग्रुप ए टू एल। अब उसमें ग्रुप ए में सारी टीम्स आ जाती हैं जिनका मोस्टली मैक्सिको, साउथ कोरिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, कैनेडा, कतर, और इसके अलावा बोस्निया, हर्जेगोविना, मोरक्को, ब्राज़ील, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो इस वक्त पॉइंट टेबल है उसमें जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और इस वक्त ग्रुप ई में जर्मनी लीड कर रहा है 3 पॉइंट्स के साथ, और उसके साथ आपको बताते चलें कि ग्रुप ए में जो टीम्स अवेलेबल हैं इसमें मैक्सिको और साउथ कोरिया ये दोनों लीड कर रहे हैं 3 पॉइंट्स के साथ। ग्रुप बी में आपको बताते चलेंगे जनाब इस वक्त सारी टीम्स बराबर हैं जनाब, बोस्निया, हर्जेगोविना, कतर, कैनेडा, स्विट्जरलैंड 1-1 पॉइंट के साथ। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, उसके बाद ब्राज़ील जिससे काफ़ी लोगों को उम्मीद भी थी 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे, मोरक्को दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी जीडी जो है वो प्लस में है, मीन जो जनरल उनकी सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसके अलावा आपको बताते हैं ग्रुप डी में यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए 3 पॉइंट्स के साथ लीड पे है, ऑस्ट्रेलिया भी सेकंड कर रहे हैं उनको। ग्रुप ई में जनाब जर्मनी 3 पॉइंट्स के साथ लीड पे है, उसके बाद ग्रुप एफ में जो स्वीडन है वो लीड कर रहा है इस वक्त 3 पॉइंट्स के साथ। और बताते चलें जनाब जो बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं जी एच आई जे के और एल, और इनका जो स्केड्यूल है वो अभी आगे आएगा 15 जून, यानी टूडे आज से इनके भी स्केड्यूल शुरू होंगे, और फिर आपको अपडेटेड न्यूज़ हम फीफा वर्ल्ड कप की देते रहेंगे। तो वर्ल्ड कप के हवाले से आपके क्या चार्म हैं, आप किस तरह फीफा को देखते हैं, अपनी राय अपने विचार का इजहार कीजिए, और 1157100971 पे मैसेज करके और शामिल हो जाइए हमारे साथ हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में।

लेनी खूबसूरत से प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नॉटिंगम में कुछ रोमांटिक से ट्रैक्स आपके लिए शामिल किए जा चुके हैं। ट्रैक्स के उस पार एक कमर्शियल ब्रेक हाइल होगी, उसके बाद मैं दोबारा आपके साथ रहूंगा। गपशप करेंगे, पर्सनालिटी ऑफ द डे को शेयर करेंगे, कुछ और मोटिवेशन की बातें होंगी। 10 बजे तक ठीक मेरा और आपका साथ रहेगा। खूबसूरत से ट्रैक, ट्रैक्स के उस पर रहती है आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 एफएम एंड ऐप। Your host Nasir Khan is here. Good morning, Nottingham.

जी तो लिसनर्स मैं क्या कह रही थी, आई नो आई एम श्योर आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब एक लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, यानी कि संडे, पूरे वीक के बाद आप डेली अपने काम काज में बिजी हैक्टिक रूटीन में मसरूफ रहते हो, और फिर जब आपको अचानक से एक ब्रेक मिलता है, वो ब्रेक किस सूरत में होता है, संडे की सूरत में, तो आई एम श्योर काफ़ी अच्छा लगता है, माइंड और बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। और फिर जब संडे के बाद आता है मंडे, यानी कि फिर से वही स्टार्टअप, वही न्यू चीज़ें, वही एक हैक्टिक रूटीन, तो इंसान का ज़रा सा दिल नहीं करता मंडे को सुबह उठने का, या इंसान का माइंड कहता है कि क्यों ना कुछ देर और सो लिया जाए, या फिर ज़िंदगी को थोड़ा सा स्टॉप कर लिया जाए। बट आई नो इस तरह तो हो नहीं सकता, मंडे को स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ज़िंदगी हमारा मुंतज़िर है, नए सपने, नए ड्रीम्स, नए गोल्स और नए एम्बिशंस, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम उठें, चाय का मग उठाएँ और बैल्कनी में खड़े होकर चाय पीते पीते अपने दिन का स्केड्यूल बनाएं। सो अगर अभी तक आपने अपने दिन का आगाज नहीं किया, सो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट, आइए हम और आप मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज, इस खूबसूरत से मंडे का आगाज, और मिलकर बनाते हैं आपके इस वीक के स्टार्ट को खूबसूरत और एनर्जेटिक। तो लिसनर्स आप सभी सोच रहे होंगे कि किस तरह से इस वीक के स्टार्ट को एनर्जेटिक बनाना है, सो इसके लिए सबसे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक, क्योंकि कहा जाता है कि म्यूजिक इंसान के माइंड को फ्रेश कर देता है और इंसान का नर्वस सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम करता है। सो सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक, ट्रैक से वापसी पर यहीं से गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब से लेके ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके इस दिन को, इस सुबह को खूबसूरत। सो माय ऑल द लिसनर्स एंड लवली डिवास, अभी वक्त है, उठाइए चाय का मग और इस खूबसूरत से ट्रैक को इंजॉय करिए।

वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? और मुझे बताइए कि कैसा लगता है जब हम सुबह सुबह उठते हैं, आई नो थोड़ा सा डल, थोड़ा सा लेजी फील हो रहा होता है, और फिर अचानक से हम कोई एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं या फिर कुछ ऐसा देखते हैं जो कि थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है, फ्रेश होता है। तो होता है ना कि इंस्टेंटली माइंड में एक फ्रेशनेस आ जाती है, जो इंसान थका थका सा फील कर रहा होता है, बोर सा हो रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में एक हलचल सी मच जाती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत से ट्रैक को आपके आज के इस दिन के आगाज़ के लिए चूज़ किया जाए। आई नो सब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, बट आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द डे अगर हम किसी अच्छे खूबसूरत म्यूजिकल ट्रैक से करें सो हमारा पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, खूबसूरत बन जाता है, फ्रेश बन जाता है। सो आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि म्यूज़िक को एज अ थेरेपी लें, क्योंकि आई नो बाकी तमाम थेरेपीज काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, बट इट्स अ फ्री कॉस्ट ऑफ थेरेपी जो कि हमें हील करती है, प्लस हमारे मूड को इन्हेंस करती है। सो हमने भी सोचा कि क्यों ना अपने शो का स्टार्टअप भी इस खूबसूरत से सॉन्ग के साथ किया जाए। बस कुछ इसी तरह से आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को खूबसूरत बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दे रहिए। जी तो लिसनर्स, आई नो माई लवली डिवाज वेट कर रही होंगी कि जैसा कि आज मंडे है, न्यू वीक, न्यू गोल्स, न्यू एम्बिशंस, सो आप सब वेट कर रहे होंगे कि आज के दिन का खूबसूरत सा कोट क्या है। तो आप सभी के साथ वो खूबसूरत सा कोट शेयर करती हूँ, लेकिन लेकिन अभी इस वक्त वक्त हुआ है हमारे शो में एक दिन कमर्शियल ब्रेक का। आई नो कमर्शियल ब्रेक पे जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी जरूरी है। सो जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सबसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-079-32।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी के साथ, आपकी हो ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द दीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। जी तो लिसनर्स, वो सभी लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं बताती चलती हूँ 01157100971। जी हाँ, यही है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो आप इस नंबर के थ्रू हमसे अपनी तमाम तर क्यूरीज शेयर कर सकते हैं। क्या कुछ आपके माइंड में चल रहा है, कैसा जा रहा है आपका दिन, और कैसे जा रही है आपकी जिंदगी, अपने दिल का हाल आप सिर्फ और सिर्फ हमसे शेयर कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। जी हाँ, और लिसनर्स, radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM, जिसे आप इजीली अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो आप जाइए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। और जो हजरात ड्राइव कर रहे हैं या फिर हैं सफर में, तो आप अपने सफर को खूबसूरत हंसी बना सकते हैं किस तरह से, फजा डैप के थ्रू हमें ट्यून करके। सो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से संडे के बाद जब एक मंडे आता है तो इंसान के माइंड में क्या क्या थॉट्स आती हैं, किस तरह से इंसान लेजी हो जाता है, थोड़ा सा बोर हो जाता है, और साथ ही साथ इंसान के माइंड में क्या सब चल रहा होता है कि किस तरह से हमने इस प्रेशर को ओवरकम करना है, किस तरह से इस नए मंडे का स्टार्ट लेना है। तो कुछ इसी तरह से जहां हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है, इसी तरह से अभी वक्त है कि शो को भी आगे बढ़ाया जाए। सो मैं अपने तमाम तर लवली डिवास के लिए और उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जो कि मुझे डेली सुनते हैं और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करते हैं, लाई हूँ आज इस नए हफ्ते के स्टार्ट में, नए हफ्ते के एक्साइटिंग स्टार्ट के लिए एक ऐसा खूबसूरत सा प्यारा सा मोटिवेटिंग कोट जो बना देगा आपके इस दिन को, इस सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा एनर्जेटिक। सो बिना वक्त जाया किए आप सभी से शेयर करती हूँ आज का खूबसूरत सा कोट। सो बेसिकली हमारा आज का खूबसूरत सा कोट है, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। इट रिमाइंड अस दैट अवर ग्रोथ इज नॉट अ रेस बट अ ब्यूटिफुल सीजन। चलिए आइए लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात को जरा डीपली, जरा गहराई से, जरा दिल से समझने की कोशिश करते हैं। सो इस खूबसूरत सी बात का बेसिकली आसान सा मतलब ये है कि कुदरत कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन हमें भी उस काम को मुकम्मल करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली नेचर हमें इस चीज़ को याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपनी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी से रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि हमें ज़रूरत होती है कि हम उस खूबसूरत से मौसम की तरह बन जाएं जो अपने वक्त पर आता है।

जी तो माय लवली डिवास और मेरे सभी लिसनर्स, आजकल की दुनिया कितनी फास्ट हो चुकी है, हम हर वक्त एक कंपटीशन और एक जल्दबाजी में लगे रहते हैं। सो बेसिकली जब मंडे आता है तो हमारा जो लाइफ है, हमारा जो माइंड है, वो बिल्कुल एक मशीन की तरह से काम करता है। कैरियर में जल्दी कामयाब होना, जिंदगी को आगे बढ़ाना, हर काम को परफेक्ट करना, ना सिर्फ परफेक्ट करना बल्कि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक जंग लड़ रहा होता है कि किस तरह से हम कामों को अच्छा करें और जल्दी करें। अच्छा बेसिकली हम हर वक्त ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि अच्छा फलाँ ने ये काम किया, उसने कितना अच्छा काम किया, उसने हमसे जल्दी कर लिया, हम पीछे रह जाएंगे। और हम अगर इंग्लिश में इसको कहें तो बेसिकली ये कंपैरिजन ट्रैप होता है। लेकिन लिसनर्स, आई नो आपको किसी से भी कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत नहीं कि आप दूसरों को देखें कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। आई नो दूर से देखने में हर चीज़ खूबसूरत लगती है, दूर से देखने में हर चीज़ प्यारी लगती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को करीब से देखते हैं तो हर एक चीज़ उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से वो होती है। सो माई लवली डिवास, आपको सिर्फ ये चीज़ दिखती है कि दूसरे ने क्या क्या अचीव कर लिया, लेकिन क्या आपने कभी ये देखने की, ये जानने की कोशिश की कि अगर एक इंसान ने ये चीज़ अचीव की है, उसकी लाइफ में ये तमाम तर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होगी, कितना स्ट्रगल होगा। आई नो सभी लोग अपना स्ट्रगल, अपनी मेहनत दूसरों को कभी नहीं दिखाते, लोग क्या दिखाते हैं, अपना रिजल्ट। और हम सब लोग क्या करते हैं कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन लोगों से इस कदर, और हम यही समझते हैं कि फलाँ ने तो देखो इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन स्टिल वो अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुका है, और हम हमेशा शॉर्टकट्स के इंतज़ार में रहते हैं। सो माय लवली डिवास और मेरे सभी लिसनर्स, शॉर्टकट्स कभी भी देर पार नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हों तो हर एक चीज़ का, हर एक मोमेंट का वक्त मुकर्रर है, आप वेट करें अपने मोमेंट का। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है कि आप स्ट्रगल करें कॉन्टिन्यूसली। जब हम कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पर काम करते रहते हैं, सो अ टाइम कम्स जब हमारे तमाम तर ड्रीम्स, हमारे तमाम तर गोल्स अचीव हो जाते हैं। सो उन सब के लिए, उस मोमेंट के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, मेहनत की। सो आज से लिसनर्स, हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम कभी भी दूसरों को देख कर कंपेरिजन नहीं करेंगे, बल्कि अपनी लाइन में, अपनी लेंथ में हम उतनी मेहनत करेंगे और फिर हम वो तमाम तर चीज़ें अचीव करेंगे। जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा कोट? आई थिंक सो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, यानी कि काफ़ी फिलॉसफी जा रही है ज़ैनब। सो आई थिंक काफ़ी सीरियस बातें हो गई, अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक ताकि हम अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करें।

जरूर कहोगे कि वाओ इट्स रियली अमेजिंग. सो सबसे पहले तो आई थिंक सो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ड्रामे को कि बेसिकली ड्रामा किस चीज़ से रिलेट करता है, ड्रामे के मरकजी किरदार क्या हैं और ड्रामे की स्टोरी किस चीज़ के गिर्द घूम रही है. मैं आपको बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब जाएं और जाकर इस सीरीज को, इस सीजन को, इस ड्रामा सीरियल को जरूर देखें. अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है कि जितने भी हमारे मेल हजरात होते हैं वो ड्रामास वगैरह बहुत कम देखते हैं, उनको इमोशनल रोम कॉम्स इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और उनका मेन फोकस होता है एक्शन, फाइट, इन सब चीज़ों के ऊपर. लेकिन जो हमारी डीवास हैं, यानी कि वो तमाम तर फीमेल्स जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, वर्क पर हैं, ऑफिस हैं या फिर हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, आई नो तमाम तर फीमेल्स की साइकी एक जैसी होती है और हम सबको रोम कॉम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं इंटरेस्टिंग रोमांटिक ड्रामा सीरियल्स. लेकिन ये जो ड्रामा सीरियल है जिसकी रिकमेंडेशन मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटके है. ये वो ही हमारे बेसिक फ्यूजनल ड्रामास की तरह नहीं है जिसपे बस एक लव स्टोरी होती है और बस पूरा ड्रामा उस एक लव स्टोरी के गिर्द घूम रहा होता है. सो बेसिकली ड्रामा सीरियल नेम है जंजीरें और ये रिसेंटली ऑन एयर हुआ है हम टीवी पर. सो इट्स अ पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल और इस ड्रामे की स्टोरी बेसिकली एक फैमिली के गिर्द रोटेट कर रही है. यानी कि बाज़ औक़ात हमारी ड्रामास में दिखाया जाता है ना कि जैसे कि शहरी इलाके होते हैं, दही इलाके होते हैं, इस तरह पहाड़ी इलाके भी होते हैं. सो बेसिकली जो फैमिली है वो एक पहाड़ी विला से, एरिया से बिलोंग करती है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इंसान की ज़ाती दुश्मनी, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई, जंग फसाद किस तरह से बड़े नुकसानात का मोजब बनती है और किस तरह से छोटी सी मिस्टेक एक इंसान की पूरी ज़िंदगी को, पूरी लाइफ को बदल देती है. इस ड्रामे में इमोशन है, ड्रामे में थोड़ा सा एक रोमांटिक लव स्टोरी का भी मोमेंट है, साथ ही साथ एक फैमिली है, फुल ज़्यादा एक्शन है और बहुत ही स्ट्रिक्ट. यानी कि अगर आप, मैं बोलूँ ना, जैसे कि हम और आप सीरीज देखते हैं, सो गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, उसमें था ना कि बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, एक के बाद एक ट्विस्ट. सो कुछ इसी तरह से इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं. बेसिकली इस ड्रामे के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन लीड पे हैं दानियाल जफर, सजल अली एंड अमीर गिलानी, ठीक है, उसके साथ साथ सहर हाशमी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे कि एहसन खान, मोमल शेख और अ लॉट ऑफ मैनी मोर, और सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. अदनान सिद्दीकी हैं इस ड्रामा सीरियल में. यानी कि अगर हम कास्ट की बात करें सो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से इस ड्रामे की कास्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मेन करेक्टर्स हैं. और अगर हम बात करें ड्रामे के मेन हीरो की, यानी कि मेन लीड की, सो दानियाल जफर इस ड्रामे के मेन हीरो हैं. और अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत इमोशन है इस ड्रामे के अंदर, इमोशन के साथ साथ एक्शन भी है. ऐसा नहीं है कि जस्ट इमोशन, रोना धोना है, आपको एक्शन भी दिखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक क्यूट सी लव स्टोरी भी दिखने को मिलेगी. सो इन दीज डेज ये ड्रामा सीरियल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. आजकल तो मैं बस यही देख रही हूँ, इसके साथ साथ सीरीज भी देख रही हूँ. लेकिन इस ड्रामे में इतने प्लॉट ट्विस्ट हैं कि इंसान सोचता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है. सो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही हूँ, तो ऑनेस्टली ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा कि क्या बताऊँ. सो माय लवली डिवास, लाजमी जाइए और जाकर इस ड्रामा सीरियल को देखिए और मुझे बताइए कि आपको सजल अली, अमीर गिलानी और स्पेशली दानियाल जफर की एक्टिंग कैसी लगी. सो बेसिकली दानियाल जफर ने इससे पहले दो तीन ड्रामास किए हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग इस ड्रामे में की है इट्स टोटली डिफरेंट और ये ही वाहिद वो ड्रामा है जो इनके करियर को पीक पर लेके जाएगा. सो लाजमी देखिएगा ये ड्रामा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा और फिर हम मिलकर डिस्कस करेंगे इस ड्रामा के ऊपर, ठीक है. सो अभी मैं आपको बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं दे रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लिसनर्स सोचें कि सारा सस्पेंस तो रिवील कर दिया, अब देखने में क्या मजा. सो सुनते हैं अब इसका खूबसूरत सा साउंड ट्रैक. साउंड ट्रैक सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ड्रामा किस थीम के ऊपर और किस बैकग्राउंड के ऊपर बना है. सो ये तो लिसनर्स इसका साउंड ट्रैक सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ
باتیں کرتے کرتے بالکل بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہوا اور وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, یعنی کہ ہمارا شو ہے اپنے اختتام پر. یاد رکھیے کہ شو ختم ہو رہا ہے لیکن

आपका दिन, आपकी सुबह और आपकी जिंदगी अभी बाकी है। सो कोशिश करिए आज के दिन को खूबसूरत बनाए, मीनिंगफुल बनाए, अपनों के साथ, प्यारों के साथ मिल बैठ कर जिंदगी गुजारे। फोकस करे अपने काम पर और फोकस करे खुद को इम्प्रूव करने पर, ना कि दूसरों से कंपेरिजन करने पर। और साथ ही साथ इस खूबसूरत से साउंड ट्रैक को एंजॉय करिए। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए अपनी फेवरेट होस्ट ज़ैनब फातिमा को। सुनते हैं ये साउंड ट्रैक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है तो लिसनर्स, आप ये साउंड ट्रैक अभी सुन लें और कल हम डिस्कस करेंगे साउंड ट्रैक के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM.
9: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
10: You are playing. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.

0: और बताइएगा क्या हाल चाल है, वीकेंड कैसा गुजरा आपका? वीकेंड के बाद दोबारा से रूटीन पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आई नो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, बट दोबारा से रूटीन पे आए हैं। सो बताइएगा क्या आपका मंडे कैसा गुजरा? मैं प्रोग्राम हमेशा के लिए लेके आती हूँ, मतलब हमेशा की तरह लेके आती हूँ आप सबके लिए मंडे मेलोडीज, जिसके साथ हम अच्छी अच्छी गपशप करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं, मज़े मज़े के ट्रैक आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपका पूरा वीक जो है वो बेहतर बना सके, ताकि आपका पूरा वीक अच्छे से गुजर सके। तो बताइएगा क्या हाल चाल है, दिन कैसा गुजर रहा है? हमारी याद आ भी रही थी या नहीं आ रही थी? मतलब वीकेंड में मैंने तो आपको बहुत याद किया, मतलब मेरी बकबक कोई सुनने वाला है नहीं आपके अलावा। मेरे प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर एंटरटेनमेंट। हमेशा की तरह प्रोग्राम में टॉपिक रखा जाता है, उस टॉपिक के वाले डिस्कस स्टार्ट की जाती है, बट मैं आपका इंतजार करूँगी आपके मैसेजेस का, आप के उन मैसेजेस का जो आप अपने प्यारों तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई ट्रैक किसी प्यार को डेडिकेट करना चाहें या फिर कोई ट्रैक आप अपने लिए ही डेडिकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पर मुझे आज लगता है कि आज जो है ना वो एक तो अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड बात तो करते ही नहीं है, 2 घंटे के लिए हम आपके पास आते हैं आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, और उन्हीं दौरान अगर हम अपनी बातें लेके बैठ जाए तो मेरे ख्याल से दिस इज़ रोंग, मतलब मुझे लगता है ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिर प्रोग्राम का आगाज करेंगे खूबसूरत से ट्रैक के साथ, और उम्मीद करूंगी कि आप हमें ट्यून करके रखेंगे, प्रोग्राम में साथ दे सकते हैं, आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। नंबर में नंबर बड़ा ही प्यारा है प्रोग्राम शाम होने का, हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है 1157100971। एक खूबसूरत से नंबर को कीजिएगा सेफ, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी भी प्रोग्राम की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आज किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से radiofaza 97.1 FM के नाम से। तो ओपन करेंगे मिलकर खूबसूरत इस लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होगा बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होंगी जो आपने मेरे लिए संभाल के रखी हैं, और मैंने भी आपके लिए वैसे बहुत सी बातें संभाल के रखी हैं। वीकेंड खासा अच्छा नहीं गुजरा, खासा नहीं मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा ही नहीं गुजरा, और वो कहते हैं ना जब हम अपने दिन का आगाज़ किसी और की यादों से करते हैं ना तो फिर दिन ख़राब ही गुजरता है, तो मेरे ख्याल में आपको दूसरों की यादों पर दिन का आगाज़ करना ही नहीं चाहिए। और प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल करेंगे, इन्फॉर्मेशन शामिल करेंगे, अपने दिन का आगाज अपनी मर्जी से करें ना कि दूसरों की मर्जी से। क्योंकि हकूक और इबाद का मामला बड़ा ही सख्त है, और जहाँ नमाज पर गिरने वाले आंसू जो है ना उनका हिसाब अल्लाह ताला खुद देते हैं, सो इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी की वजह से आपकी मतलब किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए। मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी की दुख की वजह ना बनूँ, मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अगर मैं मेरी ज़ात से कोई तंग है ना तो अल्लाह पाक मुझे उससे दूर कर दे, और दूर हो जाना चाहिए। जब आपको पता चले ना कि आप का मामला जो आप चला रहे हो वो नहीं चल पा रहा तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। बेइज्जती बार बार करना, वो कहते हैं ना इज्जत नफ्स का नुकसान, मोहब्बत तो अव्वल अव्वल ज़रूरी है लेकिन इज्जत नफ्स का नुकसान बहुत होता है। तो इज्जत जो है ना वो बहुत फर्स्ट पे है, मतलब पहले नंबर पर उसी को होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोग्राम में कि अपने आप को पहले अहमियत दे तब भी दूसरे लोग आपकी अहमियत को समझ सकेंगे, लेकिन ये भी बता देती हूँ कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर आप ऊपर हैं, आपके वक्त का पहिया ऊपर है तो आपका पहिया घूम के नीचे भी आएगा। किसी को इतना बेजार ना करें अपने आप से, किसी को इतना तंग ना करें कि अगला जो है वो आपसे तो कुछ कह ना सके लेकिन रब के आगे जाके आपकी शिकायतें शुरू कर दे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ, शामिल करते हैं एक खूबसूरत सी आवाज़ आपके अपने दरमियान। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद भी आएगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार मैं कोई ट्रैक प्ले करूँ और आपको पसंद ना आए, दिस इज नॉट फेयर यार। आप ट्यून करके रखिएगा फजा 97.1 FM को, एंड आपके प्रोग्राम में शामिल किया एक बड़े खूबसूरत सा ट्रैक, और थोड़ा सा दुखी हो जाएगा बट कोई बात नहीं, जिंदगी दुखी चल रही है तो ट्रैक भी दुखी चलने चाहिए। फिर साथ में आपको अपनी गपशप भी सुनाई देते रहेंगे। हकूक वाली बात की बात कर रहे थे कि बहुत बहुत बहुत इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि हकूक वाली बात का मामला बड़ा ही सख्त है, क्योंकि इंसान के गिरे हुए आंसू का जो हिसाब बना वो अल्लाह की ज़ात खुद रहती है। दुआ ये करेंगे किसी की ज़ात पर, अगर किसी की ज़िंदगी पर आपकी ज़ात अगर भारी पड़ रही है तो आप वहाँ से, मतलब अल्लाह पाक आपको उससे दूर ही कर दे। वो कहते हैं ना कि अव्वल अव्वल तो ज़रूरी है मोहब्बत, लेकिन इज्जत नफ्स का नुकसान बहुत होता है।
1: मैनू लगया अल्लाह ने आवाज़ मारी बुलाया मैनू।
0: कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम एक इंसान की ज़िंदगी से खुद को निकाल कर उसका भला कर रहे हैं, मतलब हम उसका अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अगले को भी धोखा दे रहे हैं, अगले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी मौजूदगी से, आपकी बातों से, आपके प्यार से, आपकी हंसी से किसी के दिल को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, किसी का दिन आपकी वजह से अच्छा हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान की माफ़ी जो है ना इंसान देता है। वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक कवाली भी है कि वे जे तू रब नू मनाना है पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनाना औखा है। सवाल गपशप आपके साथ स्टार्ट करेंगे वापसी पे आकर प्रोग्राम में, हमेशा टॉपिक शामिल करेंगे। बड़ा भी के लिए इस प्रोग्राम में इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़ा रहना है फजा के साथ विद सलू राज। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।
1: उस

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ प्रोग्राम में आपके पर फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। और जिन नए लोगों ने आप आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेशुक्रिया आप तमाम समातों का। मैं प्रोग्राम का आगाज़ किया था खूबसूरत ट्रैक के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे, बट अभी प्रोग्राम में जो है ना एक छोटी सी फरमाइश हमारे पास आते साथ ही पहुँचाई है। और अगर मैंने उसको शामिल ना किया तो वो कहते ना पंडी बह जानी है, तो पंडी ही बह जानी है।

ट्रैक थोड़ा सा जो है ना वो दुखी हो जाएगा कि अभी जो रिसेंटली ड्रामा खत्म हुआ था परवरिश, उस ड्रामे का ओएसटी है और काफ़ी मज़े का ये ट्रैक है। मैंने भी सुना, मतलब तो मैंने उस तरह से नहीं सुना ड्रामे में, कभी सुन लिया या फिर रील्स देख लिया उस तरह से देखा, मतलब सुना कभी इसको ऐसे गौर से नहीं सुना। सो बस आइए सुन लेते हैं इस ट्रैक को आज। ओ यार इसमें तो बहुत दुखी वाली लाइन आ गई है सबसे पहले, ओवर से समर जाफरी की आवाज़ भी इतनी प्यारी है ना कि बंदा सुन के बोर भी नहीं होता। मतलब मुझे खुद ही जो है ना समर जाफरी की पर्सनली बात पूछी है तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद है। बस ये सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार्ट। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिए गा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वन अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाचारों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सुबह प्रोग्राम में मैंने सोचा कि अपनी आवाज़ भी शामिल कर देते हैं और साथ में समझ जाफरी को भी सुन लेते हैं। वह प्रोग्राम में जो है वो अभी एक इन्फॉर्मेशन मैंने शामिल करनी थी, लेकिन अभी जो है वो कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि हकूक वाली बात का मामला बड़ा ही सख्त है। सो जानमाज पे गिरने वाले आंसू का हिसाब ना रब की ज़ात खुद लेती है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब ना हो, किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए। अगर आप किसी की खुशी की वजह बन रहे हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है। हम लोग पता कैसे लोग हैं, हम लोग दूसरों को छोड़ देते हैं इस बात पर कि भाई तुम्हारा कुछ बुरा ना हो, तुम्हारा सब बेहतर है काम। नहीं यार, हो सकता है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो ज़िंदगी भाई अब ख़राब होनी होनी है। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो पल की खुशी किसी को नसीब हो रही है आपकी वजह से तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उल्टा आप ये समझ रहे हैं कि आप उसकी ज़िंदगी से चुप करके चले जाएंगे और इसमें उसकी भलाई है, तो मेरे ख्याल में ये बात थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आती है। उसमें कोई भलाई भलाई भी नहीं है। इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है। कोशिश करें कि इंसान को इतना तंग मत करें कि वो आपको तो कुछ कह ना सके, लेकिन अपने रब के आगे जो है ना वो आपकी शिकायतें लगाए, आपके आपके बारे में बातें करें। सो इस चीज़ से जो है ना थोड़ा ख्याल रखें।

पॉसिबल आवाज़ आप तक हमारी पहुँचती रहेगी, ट्रैक भी आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी भी हमें जो है आयलन लगी एक छोटी सी मशहूर कस पा रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवे, अभी तक के लिए हमारे साथ रहिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर सुशाम दिल करते हैं तमाम देवी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जी लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सोलो राज की। सो सॉरी बीजीएम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुना दिया, मैंने सोचा क्यों ना बीजीएम का भी थोड़ा एंजॉय कर लें। अगर कहते हैं तो मैं बीजीएम को बैकग्राउंड से चेंज कर देती हूँ और मैं कोई ट्रैक प्ले कर देती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से ट्रैक ही बेहतर रहेगा क्योंकि ताकि आप नहीं, मेरे ख्याल से ट्रैक नहीं बेहतर रहेगा, फिर आप ट्रैक को सुनते रहेंगे, मेरी बातें आपने सुननी कोई नहीं है। तंजो मजाक तो चलता ही रहता है प्रोग्राम में। बट बात करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से, टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और बड़ी प्यारी बात है कि खुद को बेहतर बनाने का सफ़र कैसे तय करना है, किस तरह से हर चीज़ को फेस करना है, किस तरह से आपने हर चीज़ को लेकर चलना है। हम आज बात कर सकेंगे छोटी छोटी उन आदतों के बारे में जो इंसान को पीछे खींच लेती हैं, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें जो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब उसे महसूस होता है कि अब जो है मुझे ना खुद को बदलना है, और बदलना चाहिए ज़िंदगी में, बदलाव जाना बेस्ट है, बेस्ट। अगर आपने मैं सुबह एक शेर भी पढ़ी थी कि अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं तो एक ठोकर जो है ना वो लाजमी लगनी चाहिए। सो अगर आपने अपने आप को बदलना है तो आप सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, अपनी आदतों को बदलें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो खुद को बेहतर बनाना आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। अपनी ज़िंदगी की डोर को जब दूसरों के हाथ में थमा देंगे तब वो अपनी मर्ज़ी से खींचेंगे, और जब वो खींचेंगे तो आप मुँह के बल ही गिरेंगे। अपनी मर्ज़ी से अगर वो खींचेंगे ना तो आपने मुँह के बल ही गिरना है। सो अपनी ज़िंदगी की डोर को किसी और के हाथ में मत दें। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों को नहीं मानते। सबसे पहले इस चीज़ पे एग्री हूँ कि आप अपनी गलती को माने। गलती मान लेना कोई मतलब मेरे ख्याल से कोई चोरी नहीं है, बहादुरी है। और अगर आपने अपनी गलती मान भी ली है ना, तो मेरे ख्याल में आप ज़िंदगी में आगे बहुत सी ऐसी चीज़ों को फेस कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि आप नहीं फेस कर पाएंगे। कभी अपनी गलतियों से सीखना बंद पड़ता है, कभी नई चीज़ों से सीखना पड़ता है, कभी ना कभी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपनी ही गलतियों को जो है वो नज़र में रखा जाता है। और ऐसा होता है जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना तब हम एहतियात करते हैं कि उस टाइम पे ये चीज़ की थी तो गलत हुआ था, तो अब इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज करना है। सो ये इंसान की ज़िंदगी का सफ़र, ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर जो है वो बने। असल कामयाबी ये है कि हम कल वाले अपने आप से जो है ना आज को बेहतर बना लें। सो यही बोलूँगी कि अगर अपनी ज़िंदगी को आपने बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, अपने उस माहौल को छोड़ें जहाँ पर आप उठते बैठते हैं। इन्वायरमेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिर वही बात, मतलब हर बात के दो मतलब होते हैं। अब इस बात को देखा जाए तो इंसान जो है वो पढ़ना हो तो शोर में भी पढ़ लेता है। सीखने की बात है, तवज्जो की बात है कि अगर आप एक जगह पर दिल लगा कर बैठे हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको सीखते हैं या अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और अमूमन जो है ना हम इंसान उन चीज़ों पे अपना वक्त खर्च कर देते हैं जो पता है कि ये खिलौना दो दिन भी नहीं चलना, ये चीज़ दो दिन भी नहीं चलनी, लेकिन हम उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि यार जैसे उसके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में जो है ना इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिनको आपने तय करके आगे गुजरना होता है। जब आप एक ही चीज़ पर ज़िद लगा के बैठ जाएंगे ना तब आप बहुत बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे। ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को बदलें, वो चीज़ वो आदतें चेंज करें जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। खुद पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन उस चीज़ को सीखें जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, और सीखना भी चाहिए। जाहिर सी बात है अपनी आदतें बदलें, वो आदतें जो आपको पीछे खींच रही हैं, वो आदतें जो आपको नुकसान दे रही हैं। और अपनी आदतें बदलना मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें वक्त के साथ जो है ना बड़ी जो है कामयाबी बन जाती हैं। सो अब अपनी कोशिशों को जारी रखें और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि आप सबसे बेहतर बन के दिखाएंगे सबको, और फिर उसके बाद वो लोग जो आपको ठुकरा के गए थे, वो लोग जो आपको पीछे छोड़ के मतलब आप पे हंस के गए थे, सो उनको जो है ना वो दिखाना है कुछ बन के। आपने ना समझ की बात की जाए तो कोई ना समझ नहीं होता। हमारे माशरे में जो है ना पढ़े लिखे इंसान उसको बड़ा जो है ना वो समझदार समझता है, लेकिन अनपढ़ इंसान की कोई औकात नहीं है। बट
वही बात आ गई, उनको शायद ये लगता है कि अनपढ़ बंदा जो है वो समझदार नहीं है। सो समझदार सब होते हैं, सबको अच्छे बुरे का पता होता है, तभी जिंदगी चलती है, तभी वो दुनिया में जो है सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा मुझसे एक टाइम में कहा गया था कि ना मतलब तुम ना समझ हो, ना तुम्हें कल अकल थी, ना आज और ना कभी होगी। मैंने उस चीज़ को फील किया है। जब आप अपनी बेइज्जती को फील कर लेते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें बहुत सी चेंज आपकी ज़िंदगी में बदलाव ले आती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो महसूस करना पड़ता है। कोई बेइज्जती, बस बेइज्जती नहीं होती, एक किस्म की इंसल्ट मतलब बेइज्जती ही है, बट आप उस चीज़ को अगर दिल पे ले लेंगे ना, फील कर लेंगे, तो आप मेरे ख्याल में अच्छे से अच्छा बन के उसको दिखाएंगे। खुद पे काम करना करने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहें। और नासमझ इंसान कोई भी नहीं होता, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। जब एक मुझे भी जब बोला गया, तो दिल पे बातें रहने से जो है ना इंसान बहुत से ऐसे फासले ऐसे रास्ते तय कर आता है जिसको लगता है कि वो तय कर ही नहीं पाएगा, लेकिन एंड दी एंड जो है ना इंसान उन रास्तों को तय कर लेता है। कामयाबी अक्सर उन्हीं को मिलती है जो गिर के जो है ना फिर सीखते हैं, गिर कर उठते हैं। और यही बात है, मैं अक्सर प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस करती हूँ कि कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती, कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से ठोकर जो है ना वो लाजमी लगती है इंसान को। इंसान की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वो अगर अपने आज को अपने कल से जो है ना वो बेहतर बनाने की कोशिश करे। इसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम में आपके साथ गपशप स्टार्ट रहेगी। बल प्रोग्राम में जो है एक छोटा सा ट्रैक शामिल करेंगे, उस ट्रैक के उस पार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ट्रैक को ढूंढने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, सो आप थोड़ा सा बीजीएम को सुनिएगा, फिर ट्रैक को मैं आपके अपने दरमियान शामिल कर देती हूँ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अब मेरे ख्याल में एक छोटी सी फरमाइश अपनी भी पूरी कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि आप कोई ट्रैक किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रैक आप सलू राज को डेडिकेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपने डेडिकेट करना नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए प्ले कर लेती हूँ। सुबह आइए शाम की एक बड़े खूबसूरत ट्रैक आपके अपने दरमियान आइए, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are safe. We are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM.
14: This is a public service announcement.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा माहरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beat.
8: Wow,
9: FM. Only Tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
13: You are listening 97.1 FM.

0: commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
6: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
3: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
6: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
3: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
7: You are listening 97.1 FM.
8: You are staying. We are... Fazan 97.1 FM.
9: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
10: 97.1 FM.
11: Zabardast hit.
7: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपना।
1: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज
8: फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड
10: एप। यू आर लिस्निंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Faza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,

0: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
1: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
0: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
1: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
0: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
1: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
0: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
3: You're listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे,

radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यारा सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।

0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी वाइब भी।
5: You are listening 97.1 FM.